那么要我经济不好，所以经济。

0: महाराज के। जय जय श्री राम,
1: जय जय श्री राम,
0: जय जय श्री राम,
1: जय जय श्री राम,
0: जय जय श्री राम,
1: जय जय श्री राम।
0: नमः पार्वती पतये हर।

प्रस्तुत है श्री मद्भगवद गीता का सरल व संगीतमय हिंदी काव्यांतरण श्री गोविंद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। पिछले अध्याय में श्री भगवान की वाणी से भ्रमित अर्जुन पूछता है कि हे जनार्दन, मुझे इस युद्ध रूपी घोर कर्म हेतु प्रेरित करने का क्या अभिप्राय है। प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण उसे कर्मयोग, ज्ञान योग वे कर्म बंधन के सिद्धांतों को समझाते हैं। वे यज्ञ की महिमा का भी वर्णन करते हैं। अर्जुन पूछता है,

श्री कृष्ण महापुरुषों द्वारा उत्तम आचरण एवं जनहितकारी कर्मों की आवश्यकता पर बल देते हुए मानव मात्र को अपने प्राकृतिक गुणों से प्राप्त स्वधर्म का निर्वाह करने को कहते हैं।

अर्जुन के पूछने पर वार्ष्णेय कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न काम व क्रोध मनुष्य का महान शत्रु तथा पापी होता है। श्री भगवान इस कामरूपी दुर्जय शत्रु पर स्थिर मन व बुद्धि से विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं।

नदी यानी जीवन धारा, जिसकी गोद में सदियों से पोषित और विकसित होती रही है मानव सभ्यता और संस्कृति, जिसके किनारे साक्षी हैं इतिहास के। स्थापत्य की विशिष्ट शैलियों का जहां होता रहा है जन्म और निर्मित होते रहे हैं हमारे पूजा स्थल, ज्ञान के खुलते रहे हैं चक्षु और पाते रहे हैं लोक से परलोक तक के रहस्यों की दिव्यताएं। नदी न केवल देती है जीवन मनुष्यों को, बल्कि माँ की तरह पालती है जगत के सभी प्राणियों और वनस्पतियों को। नदी का अर्थ मात्र बहता पानी नहीं है, पुरातन से नूतन के विभिन्न जीवन स्वरों की राग मालिका है नदी।

0: सिन्धु जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु।
1: भारत उपखंड की सात महानदियों में से एक है गोदावरी। पुराण प्रसिद्ध है कि मानव के जीवनहार के लिए इसे पृथ्वी पर लाए महर्षि गौतम। पश्चिम की घाटियों में एक छोटा सा गांव है त्र्यंबकेश्वर। 12 ज्योतिर्लिंगों में त्र्यंबकेश्वर भी एक है। महाराष्ट्र में नासिक से 28 किलोमीटर दूर चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ वहीं है ब्रह्मगिरी। गोदावरी का उद्भव यही हुआ।
2: जय देव जय मंगलमूर्ति दर्शन मात्रे मन स्वर्णे मात्रे मन कामुना प्रति जय देव जय दे कर्पूर कर्णम कृणावतारम दंवारदारम दिविंग्रारम सदासंदम नम्नामि मंदारमाला गुलदारकाय कपालमाला शशेखराय दिव्यांबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय कर्पूर महामंगल निरांजन दीपम दर्शयामि।
1: अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं यहाँ।
3: महर्षि गौतम ने कोसों दूर से आकर ब्रह्मगिरी पर्वत पे कुटिया बनाई और कठोर तपस्या की। महादेव प्रसन्न हुए। महर्षि ने कहा,
4: हे प्रभु, आपकी जटा से गंगा माई की एक और शाखा प्रवाहमान हो।
5: तब करुणामय शिव जी ने आनंद का तांडव किया और अपने जटाजू ढीले कर एक पतली सी धार छोड़ी। शिव जी का आशीर्वाद है गोदावरी।
3: महर्षि गौतम के बारे में एक और कथा कही जाती है।
5: इस प्रदेश में एक बार भयंकर अकाल पड़ा। महर्षि गौतम ने अपनी तप शक्ति से खेत जोतकर अनाज पैदा किया और सभी को भोजन कराया। कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने एक दुबली गाय उनके खेत में चरने के लिए छोड़ दी। महर्षि ने उस पर एक कुश चलाया, गाय मर गई। गो हत्या के पाप से बचने के लिए उन्होंने घोर तप किया। उस पाप को धोने के लिए स्वयं गंगा जी को उपस्थित होकर उस स्थान से बहना पड़ा।
1: गौतम महर्षि की ये गंगा ही गोदावरी बनी। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि और वशिष्ठ सात शाखाओं में गोदावरी को आगे लाए। धवलेश्वर के सामने ये नदी दो शाखाओं में बट गई, पूरब में गौतमी, पश्चिम में वशिष्ठा, और वहां से फिर दो शाखाएं होकर पूरब में सागर से संगम।
6: नमस्कार राजेश दीक्षित जी, हम लोग पर्यटक हैं। गोदावरी नदी के जन्मस्थल से लेकर सागर संगम तक की यात्रा हमारा उद्देश्य है। ब्रह्मगिरी मंदिर आपका आराधना स्थल है, कृपया हमें जानकारी देंगे?
7: महाराष्ट्र में सबसे बड़ा नाथ संप्रदाय है जो सबसे मान्यता प्राप्त है। हर 12 बरस में इधर एक कुंभ मेला होता है जहां साधु लोग अपने आध्यात्मिक अनुभव आपस में बयान करते, आपस में चर्चा करते हैं, उसको कुंभ मेला कहते। इधर ब्रह्मगिरी पर्वत है, उसको प्रदक्षिणा लगाते हैं श्रावण महीने में। ये जो त्र्यंबकेश्वर आद्य ज्योतिर्लिंग है, इसी ज्योतिर्लिंग को राजा ये पदवी है। यहाँ गौतम ऋषि ने जहाँ तपस्या की है वो भी मंदिर है। तो ब्रह्मगिरी जो शिखर है ब्रह्मगिरी पर्वत का, उससे गोदावरी का उगम स्थान है। इधर पेशवे है जो पहले बालाजी विश्वनाथ पेशवे, उन्होंने इस मंदिर के निर्माण का आदेश दिया और तब से वो चालू हो गया था। श्रीमंत माधवराव पेशवे उनके काल में ये पूरा हुआ। ऐसा सभी वारकरी संप्रदाय हो या नाथ संप्रदाय हो या वामाचारी तांत्रिक संप्रदाय हो, सब संप्रदाय इस भूमि से जुड़े हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मदेव की पूजा सिर्फ यही होती है। अपने हिंदू धर्म में ब्रह्मदेव की पूजा कभी नहीं करते, लेकिन इधर वो इस लिंग में ब्रह्मदेव की पूजा होती है। दूसरी बात ऐसी कि शिवलिंग को हम प्रदक्षिणा नहीं लगाते, लेकिन यहाँ शिवलिंग में तीनों भी देव है, विष्णु और ब्रह्मा, त्रिगुण स्वरूप है ये त्र्यंबकेश्वर, तो इसलिए इसे आद्य ज्योतिर्लिंग, सबसे पहला ज्योतिर्लिंग और त्र्यंबक राज कहते हैं।
1: ये है कुशावर्त। गंगा द्वार से निकली गंगा कुशावर्त पहुंचकर ही तो गोदावरी बनी।
6: ये है केदारेश्वर। लगभग 300 साल पहले ये मंदिर बनाया गया था।

0: शुक्ल यजुर्वेद का पाठ चल रहा है। ये गंगा गोदावरी का मंदिर है। हमने सुना है कि यहाँ माघ शुक्ल दशमी को गोदावरी का जन्मदिन मनाया जाता है। 12 दिनों का उत्सव।
1: अगला उत्सव 11 जनवरी 1991 को होगा। लाखों लोग आते हैं उत्सव देखने। मानव मानव के बीच ऊंच नीच का भेदभाव न हो, यही है नाथ परंपरा का मौलिक उद्देश्य। सुप्रसिद्ध नाथ परंपरा का जन्म त्र्यंबकेश्वर में ही हुआ था।
2: गोदावरी के पावन जल से पल्लवित और सिंचित है नासिक, युगों से पवित्र। कृतयुग में ये पक्षनगर था, त्रेता में त्रिकंटकम, द्वापर में इसे नवशिखा कहा गया, जो समय के साथ बदलते बदलते नासिक बन गया। गोदावरी का पूर्व तट पंचवटी कहा जाता है। बृहस्पति के सिंह राशि में प्रवेश करते समय मनाया जाता है कुंभ। कहते हैं,
3: एक बार गरुड़ जब अमृत कुंभ को भूमि पर ला रहे थे, तब उसमें से 4 बूंदें भूमि पर गिर पड़े थी। जहां वे 4 बूंदें पड़ी, उनमें नासिक भी एक है। बाकी 3 हैं हरिद्वार, प्रयाग और उज्जैनी, और इन्हीं स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है।
4: रामकथा प्रसिद्ध है पंचवटी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को यही विरूप किया था। यहाँ पांडवों और बुद्ध की गुफाएं भी हैं।
1: नासिक जितना अतीत के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही आधुनिक तीर्थों के लिए भी। तुमने ये जानकारी अपनी डायरी में लिख ली है ना? आओ अब हम लोग करेंसी प्रेस देखने चलेंगे।
0: और हाँ, थर्मल पावर स्टेशन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का कारखाना अपनी अलग विशेषताएं लिए हुए हैं। कहते हैं नासिक जिले में 100 से अधिक बड़े उद्योग हैं।
1: गोदावरी नदी पर एशिया का दूसरा बड़ा मिट्टी का बांध सॉइल डैम बनाया गया है, जो 10 किलोमीटर दूरी पर है। इसे ही गंगापुर डैम कहते हैं।
0: अब यहाँ से हमारी यात्रा का अगला पड़ाव होगा पैठण।
1: पैठण में हमें मिलना है आचार्य ब्रह्मानंद देशपांडे जी से। ये इतिहास के विद्वान हैं।

0: गाथा सप्तशती विश्व का पहला संकलित काव्य संग्रह है। अपने राज प्रासाद में बैठकर गोदावरी के तरंगों को निहारता हुआ वह महाराष्ट्र प्राकृत में झूम झूम कर गाता था, सच्चम भन गोला वई पूव समुद्रेण सहिया संति सालाहण कुल सद्यसम जईते कूले कूलमत्थी। सच बोलो गोदावरी, तू पूर्व समुद्र तक बहते जाती है, क्या सातवाहन कुल जैसा पराक्रमी और वैभवशाली एक भी राजकुल तेरे तीरों पर बसा हुआ है? यह थी सातवाहनों की विजय गाथा। यह भूमि संतों की है, यह भूमि योद्धाओं की है, भट्टोजी दीक्षित जैसे वैयाकरणों की है जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी पर टीका लिखी। यह भूमि चित्रकारों की है, लेकिन इन खंडहरों से गुजरते हुए एक भावना मन में जाग उठती है कि एक समय था कि जब पैठन समूचे महाराष्ट्र का केंद्र था, एक समय था जब पैठन समूचे भारतवर्ष का केंद्र था, एक समय था जब पैठन समूचे यूरोप और आशिया खंड का केंद्र था।
1: पैठन यानी मंदिरों का नगर, सात वाहनों की राजधानी, प्रतिष्ठान नगर, अनेक विभूतियों की जन्मस्थली। सन 1533 में स्वामी एकनाथ का जन्म यहीं हुआ था। कोई 700 वर्ष पहले चक्रधर स्वामी यहाँ पधारे थे और महानुभाव पंथ की स्थापना की थी।

0: नदी के किनारे पहले बनते थे मंदिर और अब बन रहे हैं बांध और कारखाने जो समृद्धि और विकास के चरण हैं। पैठण बांध के अलावा मजलगांव और दुधना बांध भी हैं। लगभग 4,60,000 एकड़ में सिंचाई की जाने लगी है। सिंदपण, पूर्ण और दुधना आकर यहीं गोदावरी में मिलती हैं। नांदेड़ होकर गोदावरी आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में बहती है और पोलवरम के पास मैदान में प्रवेश करती है। धवलेश्वरम के पास आकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, गौतमी और वशिष्ठा।
1: कहते हैं देश में तीन स्थानों पर ही सरस्वती के मंदिर हैं। इनमें से एक मंदिर बासरा आदिलाबाद में है। मूर्ति रेत की बनी है।
2: कालेश्वर महाक्षेत्रम को त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्षेत्र में गोदावरी उत्तर की ओर से मुड़कर सीधे पूरब दिशा की ओर बहने लगती है। अर्धचंद्राकार दृश्यावली बड़ी मनभावन लगती है। और द्राक्षारामम का भीमेश्वर, श्रीशैलम का मल्लिकार्जुन मंदिरों के साथ कालेश्वर के मंदिर के कारण ही इस प्रदेश को त्रिलिंग देशम भी कहा जाता है।
1: रामावतार के 25 क्षेत्र स्थानों में भद्रगिरी प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ श्री आदि शंकराचार्य भी पधारे थे।
0: गोदावरी के किनारे किनारे अनेक प्रसिद्ध मंदिरों का स्थापत्य हमें अपने गौरवशाली अतीत से साक्षात्कार कराता है और जहाँ सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, धर्म, इतिहास के विकास की कहानी कहता है, वहीं वर्तमान में भविष्य की जो नींव रखी जा रही है उसका सुख भी देता है।
1: आदिकाल की गाथा आदिवासियों की संस्कृति के बारे में जाने बिना अधूरी है। हैदराबाद स्थित आदिवासी संस्कृति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्था के संयुक्त निदेशक श्री चंचू राजू से इस बारे में जानकारी मिल सकती है।
3: आदिवासी संस्कृति परिशोधन मरी शिक्षण संस्थ अने मन आंध्र प्रदेश में 1963 हैदराबाद ने मुख्यमंत्री अति सुनीत विषय गिरिजन
4: संस्था। इस संस्था की स्थापना सन 1963 में हुई थी। मुख्य रूप से यहाँ पहाड़ी लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। आंध्र प्रदेश में इनकी 33 जातियाँ हैं। अधिकारियों को कक्षाओं के आयोजन के द्वारा इनसे परिचित कराया जाता है। हमारा एक ऐसा विभाग भी है जो ये देखता है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ इन्हें मिल रहा है अथवा नहीं, क्योंकि कई गैर पहाड़ी लोग भी पहाड़ी होने का प्रमाण पत्र पाने की कोशिश करते हैं, जिससे वे भी उनके समान लाभ प्राप्त कर सकें। शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष योजना आरंभ की गई है। आश्रम पाठशालाएं खोली गई हैं। पढ़े लिखे नौजवानों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी तरह से तैयार कराया जाता है।
2: आर्थिक योजनाओं की जानकारी लेते हैं श्री विद्यासागर से।
5: आर्थिक अभिवृद्धि पथकाल ने पद्धति प्रकार जरूरतनी मोटमोदी गिरीजन मागण समाराधन अने कार्यक्रम कभुत्व भूमि ने दिन चूसी कोलचि वाल पटाची मुझे भूमि
6: सरकार ने अनेक आर्थिक कार्यक्रम हाथ में लिए हैं। भूमि और उसके पट्टे देना, भूमि को उपजाऊ बनाना, कुएं, गहरे कुएं, तालाब आदि से लिफ्ट सिंचाई की सुविधा देना, 3 से 5 वर्ष तक उनकी देखभाल के लिए खर्चा भी सरकार देती है। रेशम उद्योग के लिए बगीचे लगाए जाते हैं, उनकी आमदनी बढ़ सके और रोजगार के नए अवसर मिल सके इसके लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं। 15 वर्षों के लिए योजनाएं बनाते हैं।
1: अपरिचित से परिचित होने का सुख कितना मधुर होता है, ये हम गोदावरी की यात्रा के समय ही जान सके हैं। हमारे साथ संस्मरणों की अनेक डायरियों की पूंजी इकट्ठी हो गई है
2: और आज हम अपने आप को संपन्न समझ रहे हैं, क्योंकि हम जान सके हैं अपना अतीत और वर्तमान। इस महान नदी के तट पर विकसित हो रही सभ्यता को अपनी आंखों देखा और किए हमने हिमालय से समुद्र तक की एकता के दर्शन। जिसे किताबों में पढ़ते रहे उसे सामने देखने का सुख सचमुच वर्णनातीत है।
7: ओम अधातः पंचांग रुद्राणाम ओंकार मंत्र।

0: कामदं मोक्षं तस्मै नकाराय नमो नमः ॐ भूर्भुवस्वः ॐ नम अं कं खं गं गं यम।
1: गोदावरी के साथ साथ हम भी अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी आंखों के सामने सागर संगम के मनोहारी चित्र तैर रहे हैं।
2: लेकिन हमारी यात्रा का अगला पड़ाव तो है कुवुरु। शैव से वैष्णव की ओर मुड़ेंगे अब हम यहाँ। मेरा मतलब है कि गौड़ीय मठ चलेंगे और वहाँ हम नादल्ला वेंकटराव जी से मिलेंगे।
1: इस स्थान की विशेषता क्या है?
2: चैतन्य महाप्रभु यहाँ पधारे थे और 10 दिन तक रहे थे।
1: अच्छा, तो चलो

0: రాధాకృష్ణుల యొక్క సమ్మిళితావతారమైనటువంటి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు
1: जब श्री चैतन्य महाप्रभु यात्रा करते हुए यहाँ आए थे तब श्री रामानंद रायलू जो कि महान भक्त थे उनके साथ उनकी 10 रातों तक चर्चा हुई। विषय था मानव जीवन की सार्थकता क्या है। प्रश्न करते रहे श्री चैतन्य महाप्रभु और उत्तर देते रहे श्री रामानंद। मधुर भक्ति बड़ी महान है। यहाँ गुरु रूप गोस्वामी ने मठ की स्थापना की 1932 में। तब से पौराणिक विषयों पर चर्चा चलती है और पुस्तकों का प्रकाशन होता है।
2: यही पास में स्थित है खाद का कारखाना। यहाँ से कॉस्टिक सोडा का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है। पास ही रॉकेट ईंधन उत्पादन करने वाला कारखाना है जिसका विशिष्ट स्थान है।
3: पट्टी सादृश क्षेत्रम नास्ति ब्रह्मांड नमो देवो श्री वीरभद्र नमो देवो न भूतो न भविष्यति।
4: पट्टी क्षेत्र का पौराणिक महत्व भी है। काकतीय राजा प्रताप रुद्र और बाद के रेड्डी राजाओं ने इस क्षेत्र के उत्थान के लिए प्रयास किए हैं।
2: और राजमहेंद्री का नाम आते ही श्री विष्णुवर्धन महाराज से लेकर विजयनगर राजाओं के नाम उभरने लगते हैं।
4: टी प्रकाशम पंतुलु जैसे नेता, कवि श्रीपाद श्री कृष्णमूर्ति शास्त्री, महान कहानीकार श्रीपाद सुब्रमण्य शास्त्री, उपन्यास लेखक चिलकमर्ति लक्ष्मी नरसिम्हम, न्यायपति सुब्बाराव पंतुलु इसी क्षेत्र की देन है।
2: आदि कवि नन्या ने महाभारत का तेलुगु अनुवाद भी तो यही किया था। गोदावरी के जल को छूती हवाओं ने अनेक सृजनकारों और विभूतियों को पल्लवित किया है।
4: मेरा मन गौतमी ग्रंथालय देखने को कर रहा है।
2: हमें मन की बात जरूर सुननी चाहिए। चलिए चलते हैं।

0: येशुदास जी, आप इस गौतमी ग्रंथालय के अध्यक्ष हैं, हमें इसके बारे में जानकारी दीजिए ना।
1: राजमहेंद्र लो कवि वीरेशलिंग अनुचरुलैन नाळं कृष्णाराव गारु स्थापिंचिन వీరేశలింగ గ్రంథాలయం, వసురాయ గ్రంథాలయం, రత్నకవి గ్రంథాలయం వంటి ఎన్నో గ్రంథాలయాలను
0: రాజమహేంద్రి మే నాళం కృష్ణారావుజీ నే సన్ 1898 మే ఇస్కి స్థాపన కీ। బాద్ మే ఇస్మే అనేక గ్రంథాలయ మిల్ గయే। యహాన్ లగ్భగ్ 56,000 గ్రంథ హై తెలుగు, అంగ్రేజీ ఔర్ హిందీ కే। ముగల్ రాజాఓ కే జమానే మే ఛపా ఎన్సైక్లోపీడియా బ్రిటానికా, సంస్కృత బైబల్, अमूल्य पुरानी पत्रिकाएं, ताड़पत्र पर ग्रंथ, ब्रज भाषा में लिखे कबीर अभंग की प्रति आदि उपलब्ध हैं। रीडर्स एसोसिएशन के अंतर्गत यहां गोष्ठियों का आयोजन होता रहता है।
2: पुरातत्व के संबंध में जानकारी के लिए हम किससे मिलें?
3: पुराकालीन अनुसंधान संघ के सचिव श्री यादगिरी नरसिम्हा राव जी से।
2: नमस्कार नरसिम्हा राव जी, सुना है यहाँ खुदाई हुई थी और उसमें अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली हैं।
4: अनेक संवत्सराल नुंचि अनेक विधालुगा पुरावस्तु सेकरण जरुगुतोंदि। मुख्यंगा
5: कई सालों से यहाँ पुराकालीन वस्तुओं का संग्रह हो रहा है। यहाँ के सरकारी म्यूजियम में अनेक अनुपम कालखंड हैं, शिलालेख और ताम्रलेख भी हैं, सुंदर मूर्तियां भी हैं। कोई 10 वर्ष पूर्व खुदाई में अद्भुत नंदी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, काकतीय राजाओं के जमाने की। दूसरी शताब्दी के एक बौद्ध विहार का भवन भी हमें मिला है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी का एक औजार भी मिला है।
0: अरे इस ओर तो देखो, जीव कारुण्य संघ। चलो भीतर चलकर देखते हैं।
3: नमस्कार श्रीमती रमन चौधरी, हम लोग पर्यटक हैं, गोदावरी दर्शन के लिए निकले हैं। आपकी संस्था का बोर्ड पढ़ा तो जानने की जिज्ञासा हुई।
6: पवित्र गोदावरी तीरों लो राजमंड्री लो गौतमी जीवकारण संघम 1940 संवत्सर स्थापించబడింది। ముఖ్యంగా అనాథల సేవ, కుష్ఠరోగుల సేవ, అనాథ ప్రేత సంస్థ।
7: 1940 में इसकी स्थापना हुई। अनाथ लोगों की सेवा, कोढ़ियों की सेवा, अनाथ शवों का दाह संस्कार, बाढ़, तूफान, आग दुर्घटना आदि विपत्तियों के समय राहत देने और समाज निर्माण के काम चलते रहते हैं। सर्वधर्म समानता का प्रचार हमारा मुख्य उद्देश्य है। नारी कल्याण और सामाजिक वन योजना आदि कार्यक्रम भी चल रहे हैं। अनाथ, वृद्ध आदि के लिए चिकित्सा और भोजन की सुविधाएं भी दी जाती हैं।
8: गोदावरी पर धवलेश्वर के पास बना बांध अपनी विशेषता लिए हुए है। 1852 में ये बांध बनकर तैयार हुआ था। इसे सर आर्थर कॉटन की कल्पना का साकार रूप कहा जाता है।
0: लोग उन्हें आधुनिक भगीरथ कहते थे। नया बांध बन जाने के बाद पुराने बांध के नमूने सुरक्षित रखे गए हैं। गोदावरी की यात्रा भी दर्शाई गई है
3: और महान इंजीनियरों श्री विश्वेश्वरैया, के.एल. राव और एन.जी. के मूर्ति के तैलचित्र भी लगाए गए हैं। ये भी बताया गया है कि उन दिनों कैसी परिस्थितियों में ये बांध बनाया गया था। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर श्री वेंकट रेड्डी से प्राप्त करते हैं कुछ और जानकारी।
9: आनेकट निर्माणों तो गोदावरी डेल्टा प्रांतम पंट पोलाल तो सस्यश्यामलमैंदि। गोदावरी तूर्पु डेल्टा 258,000, गोदावरी मध्य डेल्टा।
10: बांध के निर्माण से गोदावरी का डेल्टा उपजाऊ हो गया है। धान मुख्य उपज है, ईख और केले के बगीचे हैं। अकेले धान की पैदावार लगभग 35 लाख टन तक पहुंच गई है, जिसका मूल्य कोई 600 करोड़ रुपए से भी अधिक होता है।
8: करीब 150 वर्ष पुराने इस बांध के पास ही नया बांध बनाया गया है, जो 1989 में बनकर तैयार हुआ। प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल कर करीब 100 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। दक्षिण भारत में इस तरह का प्रयोग पहली बार यहीं किया गया है।
0: गोदावरी यात्रा का एक भाग कोटपल्ली में समाप्त हुआ। हाँ, तो अब हमारी यात्रा का अगला चरण आरंभ होता है।
3: यानी अब हम कोनसीमा मंदिरों के घर में हैं और यहाँ से पहुंचेंगे मुक्तेश्वर।

0: चारों तरफ धान के खेत और नारियल की पेड़ नजर आ रही है। कहते हैं यहाँ उत्तम खादी भी बनती है।
1: और एक अनोखी बात देखी, पता ही नहीं लगता कि एक गांव की सीमा कब खत्म हो गई और दूसरे की शुरू।
0: मेरी डायरी में लिखा है कि नरसापुरम में बुनाई का काम बहुत अच्छा होता है। श्री सत्यनारायण को लेस मेकर अवार्ड मिला है। चलो उनसे मिलकर बात करते हैं।
2: लेसर ने लिख लो मतलब
3: लेस में हमारा दर्जा अव्वल है। हमने यूरोप में नया मार्केट बनाया। करीब 1.5 करोड़ रुपए के माल का हम निर्यात करते हैं। हम इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। दूर दूर तक इसकी प्रसिद्धि है।
1: श्री आरामम चालुक्य और पल्लव राजाओं के शिल्प के वैभव का प्रतीक है यहाँ का गोपुर। ये गोपुर राज्य के देवालयों में सबसे ऊंचा है। कहते हैं ब्रह्मा जी और वशिष्ठ जी ने यहाँ तप किया। यहाँ सागर और वशिष्ठा गोदावरी का पवित्र संगम होता है। माघ शुक्ल नवमी से लेकर पूर्णिमा तक यहाँ भगवान का कल्याण मनाया जाता है। लाखों लोग यहाँ आते हैं।
4: ओम अधातः पंचांग रुद्राणाम ओंकार मंत्र
1: ब्रह्मगिरी से निकली गोदावरी ब्रह्म के तप स्थल तक कल कल करती आती है और समुद्र

से मिलन करती है। समुद्र के भीतर कोई 4 मील दूरी पर होता है महोत्तम संगम। ये दृश्य नीले आकाश और नीले समुद्र जल के मिलन की परछाई दिखाने वाले दर्पण सा लगता है। गोदावरी की यात्रा अतीत से वर्तमान की यात्रा, सभ्यता और संस्कृति के विकास और ज्ञान की यात्रा।

क्या दृश्य है, कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो माँ मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने माँ के आंसू पोंछे और देखिए मुस्कुराते हुए क्या कहने लगे,

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

जी जा रही है, जी जा रही है, जी जा रही है, जी जा रही है, जी जा रही है, जी जा रही है।

शिव महिमा, महिमा। प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित यह कार्यक्रम शिव

0: श्रोताओं, शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने कामदेव और संध्या के जन्म का विवरण सुना। कामदेव और रति का विवाह सृष्टि के सनातन कार्य का नियामक और भावी समाज के लिए विवाह प्रथा का द्योतक बन गया। सकाम भाव से पीड़ित हो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री संध्या ने देहाहुति दे दी, परंतु शिव वरदान से वे प्रातः संध्या और साय संध्या के रूप में अजर अमर हो गई। प्रभु आशीर्वाद से ही वो अपने अगले जन्म में महर्षि वशिष्ठ की विदुषी पत्नी अरुंधति बनी। अब प्रस्तुत है इसके आगे की शिवलीला। नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: मुनि शौनक जी, इस प्रसंग के बाद प्रजापति दक्षराज ने अपने मानस से अनेक जीवों की रचना की।
2: महाभाग सूत जी, फिर तो समस्त सृष्टि इन जीवों तथा इनकी संतानों से व्याप्त हो गई होगी।
1: नहीं शौनक जी, जीव उत्पन्न तो हुए परंतु उनकी संख्या बड़ी नहीं। चिंतित दक्षराज परमपिता के पास उपाय पूछने जा पहुंचे।
3: पुत्र दक्ष, तुम प्रजापति पंचजन की पुत्री आसिन की अर्थात वीरणी से विवाह करो। तुम दोनों के दैहिक संबंध से सहस्रों जीव उत्पन्न होंगे।
4: परंतु पितामह, इससे प्रजा की अविरल उत्पत्ति कैसे संभव होगी?
3: ये सभी मानव दैहिक संबंध के माध्यम से ही भावी पीढ़ियों को जन्म देंगे। यही तुम्हारे तथा श्रीहरि के लिए प्रजा का विस्तार करेंगे।
4: जो आज्ञा परमपिता।
2: उत्तम, अति उत्तम सूत जी। तो इस प्रकार त्रिकालदर्शी ब्रह्मा ने मानव जीवन का सूत्रपात किया।
1: हाँ शौनक जी, दक्ष पत्नी वीरणी के गर्भ से 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। सभी धर्मपरायण तथा आज्ञाकारी थे। पुत्रों के बड़े होने पर प्रजापति दक्ष ने पुत्रों को आदेश दिया, जाओ सिंध नद तथा समुद्र के संगम पर स्थित नारायण सर तीर्थ पर तपस्या करो, प्रजा निर्माण का कार्य आरंभ करो।
2: फिर क्या हुआ ऋषिराज सूत जी?
1: दक्ष पुत्रों की तपस्या ने ब्रह्म ऋषि नारद को सोच में डाल दिया।
5: नारायण नारायण नारायण। आइए महामुने नारद, विराजिए।
6: धन्यवाद श्री हरि।
5: कहिए, सब कुशल मंगल तो है?
6: नारायण नारायण। भगवान के होते हुए क्या अकुशल और अमंगल हो सकता है?
5: तो फिर आपके ललाट पर चिंता की ये रेखाएं क्यों?
6: चिंता नहीं महाप्रभु, जिज्ञासा, मात्र जिज्ञासा।
5: जिज्ञासा? कैसी जिज्ञासा मुने नारद?
6: महाप्रभु, क्या आपको ज्ञात है कि ब्रह्मांड में क्या घट रहा है?
5: ऋषिवर, आप तो दसों दिशाओं में भ्रमण करते रहते हैं, फिर भला कौन सी घटना विशेष आपको हमारे पास खींच लाई है?
6: प्रभो, दक्ष पुत्र मानव सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ करने जा रहे हैं।
5: ये तो हर्ष का विषय है मुने नारद। हमारा तो जन्म ही सृष्टि संचालन के लिए हुआ है, अब उसमें मानवीय तत्व भी आ जुड़ेगा।
6: ये तो सत्य है श्री हरि, परंतु।
5: परंतु? परंतु क्या मुने नारद?
6: प्रभु, क्या संख्या के आधार पर मानव हम पर हावी नहीं हो जाएगा?
5: मुने नारद, हम 64 करोड़ हैं।
6: नारायण नारायण, क्षमा करें प्रभु, अकेली पृथ्वी ही इससे कहीं अधिक मानवों को आश्रय दे सकती है।

0: तो फिर क्या किया जाए मुने नारद?
1: नारायण नारायण, महाप्रभु आपके समक्ष भला मैं तुच्छ क्या कहूं। मैं तो सेवक हूं, आप मुझे आदेश दें।
0: तो सुनो नारद,
2: महाज्ञानी शौनक जी, भगवान विष्णु के कहने पर नारद दक्ष के सहस्रों पुत्रों के पास गए तथा उन्हें बहला फुसला कर तपस्या से विरक्त कर दिया। दक्ष पुत्र पृथ्वी का अंत ढूंढने निकल पड़े। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसका कोई अंत ना था।
3: ऋषिवर सूत जी, दक्ष तो अत्यंत दुखी हुए होंगे।
2: हाँ शौनक जी, पुत्र वियोग से संतप्त दक्ष परम पिता ब्रह्मा के पास पहुंचे। उनकी व्यथा सुन ब्रह्मा जी ने उन्हें सांत्वना दी। धीरज रखते हुए प्रजा निर्माण का कार्य जारी रखने का आदेश दिया। दक्ष पत्नी ने पुनः 1,000 पुत्रों को जन्म दिया। नारद मुनि एक बार फिर दक्ष पुत्रों को अनजान तपस्या मार्ग पर भेजने को उद्यत हुए। नारद दक्ष पुत्रों को भ्रमित कर ही रहे थे कि दक्ष वहां आ पहुंचे।
4: ठहरिए मुनि नारद, ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों मेरे पुत्र को भटका रहे हैं?
1: नारायण नारायण, दक्षराज भटका नहीं रहा हूं मैं। मैं तो इन्हें पिता की आज्ञा पालन का सही मार्ग बता रहा हूं।
4: आपने पहले भी मेरे पुत्रों को ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्त हुए बिना संन्यास का मार्ग दिखाया है। आप तो परम ज्ञानी हैं, क्या आप नहीं जानते कि इन ऋणों से मुक्त हुए बिना मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है?
1: प्रजापति दक्ष, मेरे बताए मार्ग पर चलकर तुम्हारे पुत्र सांसारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे।
4: तूने मेरे पुत्रों को ज्ञान का मार्ग नहीं भटकाव का मार्ग दिखाया है, इसलिए मैं दक्षराज तुझे श्राप देता हूँ कि तू भी जीवन भर तीनों लोकों में भटकता ही रहेगा, तेरा कहीं स्थाई वास नहीं होगा।
0: शांत शांत हो जाओ पुत्र दक्ष, शांत। ये तुमने क्या कर डाला? अपने मानस भ्राता को ये कैसा श्राप दे दिया? ऐसा क्रोध तुम्हें शोभा नहीं देता पुत्र।
4: परमपिता, और जो इन्होंने किया वो शोभा देता है? अपनी अपनी कुटिल नीति।
0: कुटिल नीति नहीं दक्ष, कुटिल नीति नहीं, ये काल की नियति है, दैवी विधान है, और इसका निर्धारण स्वयं देवाधिदेव करते हैं। पुत्र, ये तो शिवलीला है।
5: शिवलीला? तो क्या सब उन्हीं की इच्छा से हो रहा है?
0: हाँ पुत्र, और जो वे करते हैं वो सदैव मंगलकारी ही होता है। पुत्र वियोग का शोक मत करो, प्रभु का स्मरण करो, प्रजा विस्तार का अपना कार्य जारी रखो।
5: जैसी आपकी आज्ञा विधात। जाओ पुत्रों, जाओ, जैसा मुनि नारद ने कहा है वैसा ही करो।
6: जैसी आज्ञा।
2: ब्रह्मन, फिर कालांतर में दक्ष के यहां 60 सुंदर पुत्रियों का जन्म हुआ। बड़ी होने पर दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप मुनि को, 27 चंद्रमा को, 4 कन्याएं तारक्ष तथा 2-2 कन्याएं भूत, अंगिरा और कृषश्व को ब्याह दी।
3: सूत जी, दक्ष की 61 पुत्री का क्या हुआ?
2: शिव महिमा का ये प्रसंग अर्थात सती प्रसंग अति महत्वपूर्ण, रोचक एवं विस्तृत है।
3: तो सुनाइए ना सती कथा।
2: अवश्य शौनक जी। एक बार शिव माया के

0: कारण परमपिता ब्रह्मा के मन में एक विचित्र विचार ने जन्म लिया। वे अपने को विष्णु तथा रुद्र से ऊंचा मानने लगे। इस पर भगवान शंकर ने उनका उपहास किया। उन्हें समझाने का प्रयास किया कि तीनों एक समान हैं, तीनों ही उनका अंश हैं।
1: और ये सत्य भी था सूत जी,
0: परंतु ब्रह्मा तो स्वयं शिवलीला से मोहित थे। वे बहुत क्षुब्ध हुए तथा रुद्रदेव से ईर्ष्या करने लगे। उनके हृदय में रुद्रदेव की तपस्या भंग करने की भावना घर कर गई।
1: रुद्र तपस्या भंग करने की भावना? फिर परमपिता ने क्या किया?
0: उन्होंने कामदेव और दक्ष को बुलाकर आदेश दिया कि वे किसी भी प्रकार रुद्र का मन मोहें। उनका ध्यान किसी कमनीय स्त्री के पाणी ग्रहण की ओर आकृष्ट करें।
1: तो क्या कामदेव को या दक्ष को इसमें सफलता मिली?
0: नहीं शौनक जी, अनेक प्रयासों के उपरांत भी महातपस्वी रुद्रदेव अपनी तपस्या पर अडिग रहे। ब्रह्मा दक्ष और कामदेव के साथ अगली नीति के विषय में सोच ही रहे थे कि नारद पृथ्वी का भ्रमण कर वहां आ पहुंचे।
2: नारायण नारायण।
3: प्रणाम परम पिता।
4: प्रणाम पुत्र नारद। विराजी।
5: प्रणाम मुनि श्रेष्ठ।
2: प्रणाम। ओहो, दक्षराज और कामदेव भी उपस्थित हैं। फिर तो अवश्य ही किसी गंभीर विषय पर वार्तालाप हो रहा होगा।
4: हाँ पुत्र नारद, विषय तो गंभीर ही है। हम प्रयासरत हैं कि किसी प्रकार रुद्रदेव अपनी तपस्या छोड़ वैवाहिक बंधन में बंध जाएं।
2: परमपिता, आप तो सदा ही रुद्र रूपी शिव का मंगल सोचते हैं। वैसे भी प्रभु, रुद्रदेव की इस घनघोर तपस्या से आपके और श्री हरि के वर्चस्व को हानि पहुंच रही है।
5: वो कैसे मुनि नारद?
2: दक्षराज, आप प्रजापति हैं, परंतु आपकी प्रजा आपके पिता की अपेक्षा भभूतधारी रुद्रदेव को अधिक पूजती है।
6: वो इसलिए नारद मुनि कि काम क्रोध लोभ और मोह से विलग रुद्रदेव सबके लिए आदर्श हैं।
2: नारायण नारायण। कामदेव, क्या परमपिता और श्रीहरि हमारे आपके सबके लिए आदर्श नहीं है?
6: अब
2: विशेषकर मानव जाति के लिए, जिसके यही कर्ता और भर्ता हैं।
4: पुत्र नारद, प्रश्न देवत्व के वर्चस्व का नहीं है। प्रश्न है हमारे द्वारा निर्मित जीवन के सुचारू संचालन का, उसमें रुद्रदेव के सक्रिय योगदान का। भविष्य को दृष्टि में रखते हुए रुद्रदेव का विवाह अति आवश्यक हो जाता है।
2: नारायण नारायण। तो फिर प्रभु, विलंब कैसा? आप तो रचयिता हैं। रुद्रदेव के लिए किसी सुयोग्य नारी की रचना कर डालिए।
4: नहीं पुत्र नारद, उस नारी का मेरी मानस पुत्री नहीं, मानवी होना आवश्यक है। उसमें रुद्र बीज ग्रहण करने की क्षमता होना आवश्यक है।
5: कौन हो सकती है वो दिव्य मानवी?
4: हे श्रीहरि, आप ही कुछ उपाय करें।
7: प्रणाम भगवान विष्णुदेवा।
1: कहिए सृष्टिकर्ता, कैसे स्मरण किया?
4: आप तो अंतर्यामी हैं लक्ष्मीपति, आपसे हमारा कौन सा उद्देश्य छिपा है?
1: विधेय, क्या आप भूल गए हमें और आपको उत्पन्न करने के पश्चात देवाधिदेव ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि शिव की तरह देवी शिवा के भी तीन रूप होंगे, लक्ष्मी सरस्वती और सती। लक्ष्मी और देवी सरस्वती तो हमें प्राप्त हो गई हैं, अब रुद्रदेव को सती की प्राप्ति होना शेष है।

0: परंतु विष्णु हरि निर्विकार योग परायण प्रभो किस स्त्री को अपनी सहधर्मिणी बनाना स्वीकार करेंगे, वो भी मानवी रूप में। इसके लिए स्वयं देवी शिवा को मानवी रूप में अवतार लेना होगा। शिवा ही शिव की अर्धांगनी बन सकती हैं विधात। ब्रह्मपुत्र दक्ष।
1: आज्ञा श्री हरि। पुत्र

0: रूपिणी प्रसीद जगन माए प्रसीद।
1: दक्ष, तुम्हारी इस 3 सहस्त्र वर्षों की तपस्या से मैं प्रसन्न हुई। इच्छित वर मांगो।
2: माते, परम आराध्य शिव ने तो रुद्र के रूप में जन्म ले लिया है, परंतु आपका कोई अवतार नहीं है। ऐसे में रुद्र की अर्धांगिनी कौन होंगी?
1: हे ब्रह्मा पुत्र दक्ष, इसके लिए मुझे क्या करना होगा?
2: महादेवी, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें।
1: तथास्तु, मैं शीघ्र ही वीरणी के गर्भ से जन्म लूंगी।
2: मैं कृतार्थ हुआ माते।
3: हां शौनक जी, उधर देवी सती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। बाल अवस्था से ही उनका हृदय शिव भक्ति में लीन रहने लगा। युवावस्था आते आते उनकी शिव आराधना महादेव को पति के रूप में पाने की अभिलाषा में परिवर्तित हो गई। फिर एक दिन

0: परमपिता, विष्णु जी, समस्त देवगण एक साथ यहाँ आए हैं। मैं धन्य हुई।
1: पुत्री सती, तुम्हारी शिव निष्ठा से हम सब बहुत प्रभावित हुए हैं।
2: परंतु पुत्री, रुद्र रूपी शिव को पाने के लिए तुम्हें और कठोर तपस्या करनी होगी।
0: आज्ञा करें प्रभु श्री हरि, मुझे किस वन, किस पर्वत पर जाना होगा?
2: नहीं सती, तुम घर पर ही रहकर 12 माह का कठोर नंदा व्रत करो। एकाग्र चित होकर रुद्र देव का ध्यान करो।
1: महादेव तुम्हें अवश्य प्राप्त होंगे। जाओ पुत्री, आज आश्विन मास की पहली नंदा तिथि प्रतिपदा है। आज के इस शुभ दिन से ही अपना व्रत आरंभ करो।
0: कैसी आज्ञा ब्रह्मदेव।
3: श्री हरि, विधे, आप सब एक साथ कैलाश पर?
2: हे दुर्गा पते, हम भविष्य को दृष्टि में रखकर आपसे एक अनुरोध करने आए हैं।
3: निर्भय होकर अपने मन की बात कहिए हरे।
2: सृष्टि कर्ता के रूप में ब्रह्मा, संचालक के रूप में मैं तथा संहारक के रूप में आप रुद्रदेव एक दूसरे के पूरक हैं।
3: लक्ष्मीपते, आपका कथन सत्य है।
1: मैं और श्री विष्णु अपने निर्धारित धर्म को निभा रहे हैं, परंतु देव, संहारक के रूप में आपका कर्म अभी शेष है।
3: तो पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा ब्रह्मदेव?
1: देव, आपको अपनी तपस्या त्याग कर विवाह करना होगा।
3: विवाह? और हम? हे ब्राह्मण, मैं संसार से विरक्त योगी हूँ, भोगों से दूर रहता हूँ, विवाह को बंधन मानता हूँ। और फिर विधात, मेरे संघार कर्म और विवाह के बीच क्या संबंध है?
1: हे करुणा सागर, आने वाले समय में कुछ असुर मेरे हाथों मारे जाएंगे।

0: कुछ विष्णु जी के और कुछ स्वयं आपके हाथों काल को प्राप्त होंगे। परंतु देवाधिदेव, कुछ असुरों के विनाश के लिए आपका विवाह करना तथा पुत्र उत्पन्न करना अति आवश्यक है।
1: आप त्रिकाल दृष्टा हैं, आप कोई अनुचित अनुरोध नहीं करेंगे। वैसे भी श्रीहरि और ब्रह्मदेव, आप दोनों ही मुझे प्रिय हैं। हम अवश्य आपकी बात का मान रखेंगे, परंतु
2: परंतु क्या रुद्रदेव?
1: ऐसी कौन सी नारी होगी जो मेरा तेज सह सके, मेरे कर्म के अनुकूल चले, जो योगिनी हो तथा इच्छा अनुसार रूप धारण कर सके, मेरे ध्यान और मेरी तपस्या में विघ्न ना डाले, क्योंकि ऐसा करते ही उसका अंत हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण एक और बात है, उस नारी का मुझ में संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। अविश्वास करते ही मैं उसे त्याग दूंगा।
2: महेश्वर, देवी शिवा स्वयं दक्ष पुत्री के रूप में अवतरित हुई हैं। वे आपको पति रूप में पाने के लिए कठोर व्रत कर रही हैं।
0: वे आपकी भार्या के रूप में सर्वथा उपयुक्त हैं। देवाधिदेव, हमारा आपसे अनुरोध है कि आप सती का पाणिग्रहण करें।
1: आप सबकी मनोकामना पूर्ण होगी।
3: देवाधिदेव, जगतपते, आप, मैं धन्य हुई प्रभु, मैं धन्य हुई।
1: दक्षनंदिनी, तुम्हारे व्रत से हम प्रसन्न हैं। कोई वर मांगो देवी, मांगो, कोई वर मांगो। दक्षनंदिनी, मौन न रहो, हृदय की अभिलाषा व्यक्त करो, बोलो देवी।
3: कुछ कुछ मांगो तो आप दे पाएंगे?
1: हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मांग कर तो देखो।
3: आप हाँ। मेरे आप मुझे आप
1: मैं तुम्हें अपनी भार्या स्वीकार करता हूँ।
3: देव, मैं पूर्ण हुई। देव, मैं पूर्ण हुई।
4: आहा, कितना मंगल और मधुर वातावरण है।
5: नारायण नारायण, रुद्रदेव और देवी सती की जोड़ी कितनी दिव्य प्रतीत हो रही है।
4: स्वयं परम पिता ब्राह्मण बन विवाह संपन्न करवा रहे हैं।
5: इस अलौकिक रुद्र सती विवाह देखने को पूरा देव समुदाय उमड़ पड़ा है।
4: मंगल वाद्यों की ध्वनि से सभी दिशाएं गूंज रही हैं।
5: अरे अरे, सुनो तो, पितामह कुछ कह रहे हैं।
0: हे रुद्रदेव, हे देवी सती, विवाह संपन्न हुआ।
5: हम आपके मंगलमय दाम्पत्य जीवन की कामना करते हैं।
1: हे ब्रह्मा जी, आपने ये विवाह संपन्न करवाया, इस कारण आप मेरे आचार्य हुए। बताइए, आपको क्या दक्षिणा दूं?
0: देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो अपने इसी रूप में इस वेदी पर विराजमान रहें। यहां आपके दर्शन प्राप्त कर मनुष्यों के समस्त पाप धुल जाएंगे, उन्हें विपुल पुण्य की प्राप्ति होगी, सभी रोगों का नाश होगा।
1: तथास्तु।
6: शौनक जी, आनंद में सहस्रों वर्ष बीत गए, परंतु विधि का विधान तो कुछ और ही था। एक बार ऐसी घटना घट गई कि रुद्र ने अपनी परम प्रिय पत्नी सती

0: पति का त्याग कर दिया। अपनी पत्नी का त्याग? देवी सती रुद्रदेव के किसी कथन का अविश्वास कर बैठी। रुद्रदेव ने अपनी प्रतिज्ञावश तुरंत देवी सती का मानसिक त्याग कर दिया।
1: ये तो बड़ी दुख भरी घटना घटी मुनिश्रेष्ठ। तो क्या इसके पश्चात दोनों अलग अलग रहने लगे?
0: नहीं सूची, यही तो शिवलीला की महत्ता है। रुद्र ने सती का केवल मानसिक त्याग किया था, पति पत्नी के रूप में दोनों साथ रहते थे, दोनों के बीच प्रेम और आदर भाव यथावत बना रहा। तभी तो रुद्र सती विवाह एक आदर्श माना जाता है। शौनक जी, रुद्र और सती तो सदैव साथ ही रहते हैं, उनमें वियोग असंभव है। उनकी अपनी इच्छा से ही उनमें लीला वियोग हो सकता है।
2: श्रोताओं, आज का प्रकरण हमने शिव पुराण के रुद्र संहिता द्वितीय खंड के 11वें अध्याय से 25वें अध्याय तक से लिया था। अगले अंक में दक्ष कथा को आगे बढ़ाते हुए दक्ष यज्ञ और सतीदाह का प्रसंग प्रस्तुत किया जाएगा।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR।

लक्ष्मण रेखा पार करने पर रावण असली रूप धारण करके सीता का हरण करते हैं। अब राम लक्ष्मण पंचवटी पहुंचकर सीता को ना पाकर विलाप करते हुए घायल जटायु से मिलते हैं। गिद्धराज राम लक्ष्मण को सीता हरण की दिशा बताते हैं और सीता की खोज करते हुए दोनों भाई शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। यह देख शबरी अत्यधिक भक्ति में लीन हो जाती हैं।

राजभवन और उसके बाहर नगर में भी उत्सव का रंग छाया हुआ है। राग रंग के उत्साह से भरे पुरवासी आते जाते दिखाई देते हैं और स्त्रियां नृत्य करती और गीत गाती दिखाई देती हैं।

राजभवन का आंगन किलकारियों से गूंज उठता है। चारों भाई घुटनों के बल चल रहे हैं, माताएं बलैया ले रही हैं और राजा दशरथ झुनझुना बजा रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी है मर्यादा पुरुषोत्तम राम।
1: आज प्रस्तुत है इस विशेष नाटक माला की दूसरी कड़ी। लेखक हैं श्री जगदीश चंद्र माथुर।
2: रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन्ह दिखाया। बड़े बड़े प्रतापी एकत्र हुए हैं जनक की यज्ञशाला में। जनक अपने सेवकों को आदेश दे रहे हैं, सबको उनके योग्य आसन दो। भारी भीड़, जनकपुरी के बाल जुबान जरठ नर नारी अपने समस्त गृह कार्य बिसार कर रंगभूमि में उमड़ पड़े। और तभी राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर सरीरा। श्रोताओं, भगवान रामचंद्र के आसन ग्रहण करने पर क्या हुआ,

0: नारी बिलो कहीं हरसिहिं निज निज रुचि अनुरूप जनु सोहत सिंगार धरि मूरति परम अनूप। और राम ही चितव भाई चिहिसिया सो स्नेहु सुख नहीं कथनिया। श्रोताओ, मैं बेचारा कवि कैसे उस अनिंद्य और सहस्र रूपी शोभा का वर्णन कर सकता हूं, आप स्वयं देखिए। मिथिलेश जनक की रंगस्थली में राजाओं की पंगत और नर नारियों के समूह के बीच राम लक्ष्मण, राजत राज समाज मह कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तन विश्व बिलोचन चो।
1: सब नृपगणों को सादर अपने अपने स्थान पर बैठा दिया ना?
2: जी महाराज।
1: भीड़ बहुत है,
2: किंतु सभी दर्शक अपने यथोचित स्थान पर बैठ गए हैं।
1: किसी से कटवाणी तो नहीं बोले?
2: नहीं महाराज, जैसा आपने कहा था हम लोगों ने मृदु वचन बोलकर सभी नर नारियों से विनती की।
3: देखा तुमने उन दोनों राजकुमारों को? जहां जहां जाई कुंवर बर दो तह तह चकित चितव सबको।
4: मुझे तो ऐसा लगता है बिन भंज हूँ भव धनुष विशाला मेल ही सी राम उर्माला।
3: बिना धनुष तोड़े ही क्या बात कही तुमने? तोरे हूँ धनुष ब्याहू अब गाहा बिन तोरे को कुंवरी ब्याहा। अरे एक बार कालू किन हो सियहित समर जितब हम सो।
4: व्यर्थ मरहु जनी गाली बजाई मन मोद कन्ही की भूख बुताई।
3: सुंदर सुखद सकल गुण राशि ए दो बंधु संभु उर्वासी।
1: भाटगण तनिक इधर आइए।
5: जी स्वामी।
1: अब आप इस सभा के समक्ष मेरा प्रण घोषित कीजिए।
5: महाराज, हम इसी अवसर की बाट जो रहे थे।
6: नगाड़ा बजाओ। हे पृथ्वी का पालन करने वाले उपस्थित राजागण सुनिए। पंड विदेह कर कहे हैं हम पूजा उठाए विशाल।
7: सामने मंच पर स्थित ये शिव धनुष भारी है कठोर है ये सभी जानते हैं। आपको ये भी विदित होगा रावण और बाणासुर जैसे महाबलियों को भी इसे छूने तक का साहस नहीं हुआ। समझ लीजिए कि आप लोगों का भुजबल तो मानो चंद्रमा है और ये कठोर धनुष उसे ग्रसने वाला राहु है। हमारे स्वामी मिथिलेश जनक की घोषणा है सोई पुरार को दंड कठोरा राज समाज आज जो इतोरा तिरुभवन जय समेत वैदे ही बिन ही विचार बरई हटी दे।
2: अरे देखो देखो कैसे तमतमाकर ये राजा लोग धनुष की ओर जा रहे हैं।
4: पर एक आज तो अपने आसन से उठा ही नहीं।
2: वे समझदार हैं और वो देखो वो जो तमक कर जोर अजमाने चला था ना तनिक भी खिसका नहीं सका धनुष को।
7: अरे सभी तो जोर लगा रहे हैं।
2: बेकार
7: जान पड़ता है और भी भारी हो गया है ये धनुष। मनु पाई भट बाहुबल अधिक अधिक करुआ।
2: ये सब राजा एक साथ जुट गए हैं वो देखो। पर सब
7: दगई न संभु सरासन कैसे कामी बचन सती मनु जैसे।
2: सब निप्र भये जोग उपहासी जैसे बिनु विराग सन्यासी।

0: सभी राजा श्रीहत होकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। अब क्या होगा?
1: होगा क्या, लौटेंगे अपना समुद्र।
0: चुप चुप चुप, जनक जी कुछ कह रहे हैं।
1: शांत शांत शांत।
2: अतिथियों, मैं ये क्या देख रहा हूं, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जोपन उठाना। मेरी मनोहर कन्या, बड़ी भारी और अतिकमनीय कीर्ति, इन्हें पाने के लिए इस धनुष का दमन करने वाला वीर क्या विधाता ने रचा ही नहीं? इस धनुष को तोड़ना तो अलग रहा, कोई इसे दिल भर भूमि भी न छोड़ा सका। अब जनिको माखे भटमानी, वीर बीन मही मैं जानी। जो जनते बिन भट भूमि भाई, तो पनु करी होते ना आसाई।
3: अब क्या होगा?
0: देखो छोटा भाई कुछ कह रहा है।
4: उसका मुख तो देखो, माखे लखन कुटिल भाई भौं हैं, रद पट भरकत नयन रिसों हैं।
5: हे दात, रघुवन सिंह महु जहाँ को होई, ते ही समाज अस कही न कोई। राजा जनक ने आपके यहाँ होते हुए भी बड़ी अद्भुत वाणी कही। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक ब्रह्मांड उठावो। काचे खट जिमि टारो फोरी, सकऊ मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापु रोपे नाक पुराना। नाथ जानियस आयस हो, कौतुक करूं बिलोकी अवसो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। हे नाथ, यदि आपके प्रताप के बल से इसे कुकुर मुत्ते की तरह ना तोड़ फेंकू, तो आपके चरणों की शपथ है मुझे, मैं फिर कभी धनुष तरकश को हाथ में भी ना लूंगा।
0: सुना प्रभु? देखो बड़ा भाई क्या कह रहा है, वो भी कुछ कहेगा क्या?
4: ना सय नहीं रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा दे।
0: विश्वामित्र मुनि उठ रहे हैं।
4: जा रहे हैं क्या?
0: बड़ी राजकुमार से कुछ कह रहे हैं।
6: दशरथ पुत्र पुरुष सिंह, तुम्हें इस संकट का निवारण कर सकते हो वत्स। उठहु राम भंजहु भव चापा, नेटहु तात जनक परितापा।
7: ऐसा की देखो तो खड़े हो गए राम, पर देखो देखो मुखड़े से लगता है हर्ष विषादु न कछु उर आवा। मुझे तो इनका सहज स्वभाव से उठना अच्छा लगता है। थवनी जुबा मृगराज ल जाए। सखी देखो तो उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब, हरखे लोचन फ्रिंग। देवताओं पितरों से मेरी तो प्रार्थना है सखी, यदि हमारे पुण्य कर्मों का कुछ भी प्रभाव है, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहू रामु गणेश गोसाई। सखी सखी महारानी कह रही है सब लोग कौतुक निहार रहे हैं, कोई जाकर इन दोनों के गुरु विश्वामित्र को समझाता क्यों नहीं? राजा जनक भी अपनापन खो बैठे हैं। कहती हैं रावण बाण छुआ नहीं चापा, हार सकल भूप करे तापा। सौधन राज कुंवर कर दे ही, बाल मराल की मंदर ले ही। ऐसे तेजवंत को छोटा नहीं गिनना चाहिए। देखो ना, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोखे सुजसु सकल संसारा। रबी मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। छोटा सा मंत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को बस में कर लेता है, जरा सा अंकुश महामत गजराज को दबा लेता है।
8: हो प्रसन्न महेश भवानी, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे फलवती कीजिए। मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गण नायक बरदायक देवा, आज लगे कि न्यो दो सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी, करो चाप गुरता अति थोरी। पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठाना है, वो लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री भी डरे हुए हैं, वो भी तो पिताजी से कुछ नहीं कहते।

0: वालों की सभा में ये बहुत ही अनुचित बात हो रही है। कह धनु कुलि सहु चाहे कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा। हे विधाता, मैं किस तरह धीरज धरूं? भला कहीं सिरस के फूल के कण से हीरा छेदा जाता है? लगता है सारी सभा की बुद्धि ही बावली हो गई है। अब मोहि शंभु जाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरु रघुपति निहारी।
1: सखी सखी, तुम जरा सीता को संभालो, न जाने क्या बीत रही है इसके जी पर। राजकुमारी परिताप मत करो।
2: राजकुमारी, चिंता के मारे तुम्हारी आंखें इधर उधर डोल रही हैं। प्रभु ही चितई पुनि चितब मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुग, जन विधु मंडल डोल।
1: बोलती क्यों नहीं राजकुमारी? गिरा अलनी मुख पंकज रोकी,
2: लोचन जलु रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना।
0: यदि तन मन वचन मोर बनु साचा, और रघुपति पद सरोज जितु राजा है, तो भगवान सकल उर्वासी, करे ही मोहि रघुबर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य सने हो, सोते ही मिले न कछु संते हो।
1: आंखें खोलो राजकुमारी, वो तुम्हारी ओर देख रही हैं।
3: सीता की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। लगता है उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। यही समय है, अब मुझे और विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने। गुरुवर के चरणों में मेरा सादर प्रणाम।
1: देखो उधर देखो सखी, लखन लिखेउ रघु बंस मनी, ताकेउ हर को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मंड।
4: हे दिशाओं के हाथियों, हे धरती को धारण करने वाले कच्छप शेषनाग बारह, राम चहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आयसु मोरा।
5: ये क्या हुआ? कैसी दामिनी दमकी? आकाश में ये गोल गोल सा आकार कहां से आया?
6: वही तो धनुष है।
5: उठा भी लिया?
6: उठाने की बात करते हो, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहु न लखा देख सब उठाड़े।

0: सखियो, राजकुमारी को राम के पास ले चलो। जयमाला पकड़ाओ, आगे बढ़ो बेटी।
1: राजकुमारी, सामने रघुवीर राम खड़े हैं, अब संकोच न करो। पहिरा बहु जयमाल सुहाई, बेचारी प्रेम विवश पहराई न जाई। जब उन्हें इतना भी स्पर्श नहीं कर पाती कि पैर किसे छूगी राजकुमारी, समझी नहीं सकी। गौतम तियगति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी। राजकुमारी के इस भय की बात सुनकर रघुवंशमणि मुस्कुरा उठे। राजकुमारी, वो मुस्कुरा रहे हैं, यही अवसर है। राजकुमार के चांद मुख से हमारी राजकुमारी के कर कमल भयभीत हैं। गाओ गाओ सखी, जयमाला पड़ रही है।

0: ये भी कोई बात है?
1: महीनों का बात।
0: क्यों भाई क्यों?
1: छीन लो सीता को, दोरे धनुष ताड़ नहीं सरे,
0: दोनों राजकुमारों को बांध कर ले चलो, जीवत हमारी तुम्हारी को बरई,
1: और महाराज जनक उनकी सहायता करें
0: तो भी जीतऊ समर सहित दो भाई।
2: कैसी निर्लज्ज बातें कर रहे हैं आप लोग, उस समय आपकी शूरता कहाँ गई थी जब धनुष तोड़ना था।
3: शान शान,
4: अरे आप लोग बैठे,
3: अरे इधर देखो, इधर उधर देखो, प्रवेश द्वार की तरफ
4: है? ये कौन आ रहा है? बिशप कंध, उर्बाहु विशाला, चारु जनेऊ, माल मृगशाला,
5: कटि मुनि बसन, तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठार, कल कांधे।
4: रघुपति परशुराम,
3: परशुराम।
6: भृगुकुल भास्कर मुनि के शरीर में वीर रस के साकार स्वरूप परशुराम जी सभा में पधार रहे हैं। आप सब क्षत्रिय राजागण अपने अपने पिता का नाम लेकर मुनिवर को दंडवत प्रणाम करें।
7: दंडवत प्रणाम,
8: प्रणाम,
9: प्रणाम,
10: दंडवत प्रणाम,
11: दंडवत प्रणाम,
12: दंडवत प्रणाम,
13: दंडवत प्रणाम,
14: दंडवत प्रणाम।
15: विदेहराज, आपकी इस रंगस्थली में कहो काह अति भीर।
16: मुनिवर, बात ऐसी है कि मेरी बेटी सीता, जिसे अभी आपने अपना शुभाशीर्वाद दिया है, उसका स्वयंवर था, इसलिए सभी राजागण मेरे अतिथि होकर आए हैं, और इसीलिए सभा में ये सजावट शोभा भी आप देख रहे हैं।
15: ये तो हुआ, पर ये धनुष क्यों टूटा पड़ा है?
16: जी, मैंने ये प्रण किया था कि जो वीर इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता का स्वामी होगा। तो
15: मेरे आराध्य देव का धनुष कहूं चढ़ जनक धनुष कै तोरा, बेगी दिखाऊ मूढ़ नत आजू, उलटऊ मही जहां लही तब राजू।
17: नाथ, संबुधनु भंज निहारा, कोई ही क्यों एक दास तुम्हारा?
15: मेरा दास सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करिए लड़ाई। सुनहु राम, जय शिवधन तोरा, सहस बाहु सम सो रिप मोरा, सौ बिल गाय बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा।
18: मुनिवर, बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबू नासी कृष कीनी गोसाई, एही धनु पर ममता के हेतु।
15: रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न समार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार।
18: सुनहु देव, सब धनुष समाना, काछति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुवत टूट रघुपति हु ना दोसु, मुनि बिन काज करिए कतरो।
15: रे शठ, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना क्या? बालक बोली बदहू नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी यति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूपि बिनुकीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। रे महीप कुमार, देखिए फरसा, सहस बाहु भुज छेदन हारा, कहे देता हूं मात पितही जनी सोच बस, करसि महीप किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति भोर।
18: मुनिवर तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं,

0: पुनि पुनि मोहि देखाव को ठारू, चहत उड़ावन फूके पहारू। सुनिए महाराज, यहाँ कुम्हार बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरे जाए। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपको भृगुवंशी समझकर आपके जनऊ को देखकर आप जो कुछ कह रहे हैं उसे मैं अपना क्रोध रोक कर कहता रहा। हमारे कुल की रीति सुर महिसुर हरिजन और गाय, इन पर हम लोग अपनी वीरता नहीं दिखाते। इन्हें मारने से पाप और इनसे हार जाने पर अब कीर्ति मिलती है, इसीलिए आप मारेंगे भी तो भी आप ही के पैर पड़ेंगे। के तो मुनिवर, कोटि कुल सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। और जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि धीर।
1: कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधा संकु। काल कबुल हुई है छन माई, कहूं पुकार खोरी मोहिनाई। तुम हटकौ जो चहूं उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा।
0: हे मुनि, आपके सुयश का वर्णन आपके रहते कौन कर सकता है। अपने मुंह तुम आपन ही करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं ततो सु तब पुनि कुछ कहू, जनेरे से रो के दुसह दुख सहू। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत ना पावहु शोभा। सूर समर करनी कर कहीं ना जना वहिया, विद्यमान रन पाए रिपु कायर कतहि प्रताप। लेकिन आप मुनिवर, आप तो तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा।
1: सुनिए विश्वामित्र, अब जन दे दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अभी यह मरण हार भा साचा।
2: क्षमा करे बंधुवर, इससे अपराध हुआ, बाल दोष गुण गनहिं साधु।
1: घर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उत्तर देता जा रहा है, फिर भी बिना मारे इसे छोड़ देता हूँ। सो क्यों, केवल कौशिक सील तुम्हारे, नत यही काट कुठार कठोरे, गुरही उरिन हो त्यू श्रम थोरे।
0: हे भगुपति परशुराम,
1: अब नारू मालक
0: भगुवर परसु दिखा बहु मोही। मित्र बेचारी बचाओ नृप द्रोही, मिले न कबहु सुभट रन गाय। ब्रज देवता घर ही के बाड़े।
3: अनुचित है,
4: अनुचित है,
3: अनुचित
4: है, अनुचित है।
5: नाथ करहु बालक पर छोहु, सूद दूध मुख करिय न कोहु। जौ पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, कौ की बराबरी करत अयाना। जौ लड़िका कछु अजगर करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरी। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समसील धीर मुनि ज्ञानी।
3: लेकिन फिर हंसा तेरा ये भाई राम, तोर भ्राता बड़ पापी। गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पै मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीच मीच सम देख न मोही।
0: सुनिए मुनिवर, क्रोध पाप कर मूल, जे ही बस जन अनुचित करही, चरही विश्व प्रतिकूल। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, परिहरि कोप करी अब दाया। टूट चाप नहीं जुरही रिसाने, बैठ हो ही पाए पिराने। जो अति प्रिय तो करिए उपाय, जोरिय को बरगुनी बोलाए।
1: राम, मैं तेरे ऊपर ये कम कृपा नहीं कर रहा हूँ। बचा हूँ बिचारी बंधु लघु तोरा, इसका तो मनु मलीन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे।
5: सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिए नहीं काना। बररे बालकु एक सुभाव, इन्हीं न संत विदुष ही काउ। तेही नाही कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। कृपा कोप बधु बंधव गुसाई, मौ पर करिए दास की नाई। कहिय बेग जही विधिर सिचाई, मुनि नायक सोई करो उपाय।
1: राम, मेरा रोज कैसी जा सकता है,
3: जब अजहू अनुज तब चितब अनय से मेरा रोज क्या प्रथा हो जाए नहीं एही के कंठ कुठार न दीना तो मैं काह कोप कर कीना ये भी कोई बात है गर्व सृवही अब निप रवनी सुनी कुठार गति घोर परसु अछति देखाऊं जियत बैरी भूप किशोर
5: हे मुनिवर क्रोध त्याग दें आपके कुठारों के आगे मेरा सिर है जहिर से जाई करिय सोई स्वामी मोहि जानिय आपन अनुगामी मुनिवर प्रभु ही सेवक ही समरुकस तजहु विप्रवर रोसु बेशु बिलोकी कछु नहीं दोसु बात ऐसी है मुनिवर लक्ष्मण तो लड़का ही है देख कुठार बान धनुधारी भय लड़के ही रिस बीरु बिचारी नामु जान पे तुम्हें न चीन्हा बंस सुभाए उतरोते ही दीन्हा यदि आप अन्य मुनियों की भांति होते तो हे गोसाई यही शिशु आपकी पदरज अपने सिर पर रखता क्षमहु चूक अनचानत केरी चहिए विप्र उर कृपा घनेरी हे नाथ हम आपके बराबर होने की कैसे धृष्टता कर सकते हैं कहां तो धरती पर चलने वाले चरण और कहां उन्नत मस्तक और फिर राम मात्र लघु नाम हमारा परसु सहित बड़ नाम तुहारा देखिए हमारा तो एक ही गुण है धनुष और आपके नौ गुण हैं श्रम दम तप इत्यादि सभी परम पुनीत विप्रवर सब प्रकार हम तुम सनहारे क्षमहु विप्र अपराध हमारे
1: तू भी अपने भाई की तरह टेढ़ा जान पड़ता है मुझे निपट ब्रह्मचारी न जान सुन तुझे बताता हूं कि कैसा विप्र हूं मैं चाप स्रवा सर आहुति जानू कोप मोर अति घोर किसानू समिधि सेन चतुरंग सुहाई महामहीप भय पशु आई मैं एही परसु काट बल दीने समर जग जप कोटे ने कीने तू ब्राह्मण मात्र के धोखे में मेरा निरादर कर रहा है तुझे मेरा प्रभाव नहीं मालूम ये धनुष क्यों तोड़ डाला तेरा घमंड बढ़ गया और तुझे ऐसा अहंकार हो गया है मनहु जीत जब उठा रहा
5: तनिक सोच विचार कर बोलिए मुनिवर रिस अति टूट पिनाक पुराना मैं कहीं है तू करो अभिमाना यदि हम सचमुच किसी को विप्र कहकर उसका निरादर करेंगे तो ये सत्य भी सुनिए कि संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिससे डरकर हम अपना मस्तक नवाएं देव दनुज भूपति भट नाना समबल अधिक हो बलबाना जौरन हम ही पचारे को लरही सुखेन कालु किन हो क्षत्रिय तनुधरी समर सकाना कुल कलंकु तही पावर आना कहो सुभाव न कुल ही प्रसंसी कालहु डरही न रन रघुबंसी
6: क्या कहूं मैं लगता है मेरी बुद्धि पटल उखर गए हैं पर फिर भी
1: राम रमापति करधन लेहू खैचहु मिटे मोर संदेहु
7: अरे अरे ये कैसा चमत्कार धनुष आप ही आप मुनि के हाथों से उड़कर राम के पास पहुंच गया
8: अद्भुत आश्चर्य राजकुमार है कि ये देवता
9: देखो देखो भृगुपति परशुराम हाथ जोड़ रहे हैं
10: अरे ये तो राजकुमार राम के आगे विनती कर रहे हैं सुनो सुनो

0: जय रघुकुल केतु की जय, जय रघुकुल केतु की जय, जय जय रघुकुल केतु की जय, जय रघुपति, जय रघुवंश।
1: हे श्रोताओ, भगवान श्री राम ने कौतुक भरी लीला करके सीता स्वरूप आदि शक्ति से मिलन का अभिनय किया। उसके बाद हम आप जिसे विवाह कहते हैं वो तो रीति निभाई, क्योंकि जैसा उसी समय विश्वामित्र जी ने राजा जनक से कहा, टूटत ही धनु भयउ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहु। फिर भी राजा जनक ने अवधपुरी को दूत भेजे। दूतों ने अयोध्या जाकर महाराजा दशरथ से आदि से अंत तक का सारा वृत्तांत वर्णन कर दिया। फलतः सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। फिर तो अवधपुरी के सारे समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई। पूरे ठाट बाट और सज धज के साथ अयोध्या से बारात जनकपुरी आई। श्रोताओ, विवाह संपूर्ण होने पर राजा दशरथ चारों वर वधुओं को लेकर बारात के साथ अवधपुरी लौटे। अयोध्या में भांति भांति से आनंदोत्सव मनाया जाने लगा।

नाव मझधार में आने आधी उठत प्रचंड आधी उठता प्रचंड ताही पर बरसे पानी।

ਸੀ ਆਸ਼ਿਕ ਨਬਜ਼ ਦਿਖਾਵੂ ਰੱਬ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੇ ਰਾਮ ਕੋ ਦਿਧਾਮ ਰੱਬ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੇ

अपने राम।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम,
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।